ओके जनाब, और बड़े से मिस रगले कल रात को सच बेतूफान था, मुझे भी मैंने नहीं देखे ऐसे सुई हुई थी शायद ऐसे मंगले। अच्छा, तुम दोस्त फूड के पास कभी फूड और शिप्स का और चूट फूड के पास तुम दोस्त फूड फूड्स के पास भाई आपके पास आता है, बहुत पसंद है आपको और वो बन पर मैं इमरान में भेजेगा कोई ना शुमार से बाहर रहता उसे लिखे ली थी चिप्स में खबर मकड़ी रहा बाहर मैंने भाई माता दे टू लिसनर दुआओं की मुश्किल में जिंदगी की अल्लाह दे खल के हक पूरे भाई दुआ बदर तक हो रहे खास से मलाला मिसुल वालेकुम सलाम हो रहे हानो किसी और नियाब नहीं आए आपको समझ कुछ मैं तूफान और सासु लेकिन मत पता नहीं बहरहाल मन से बल भाई खुश भाई मखपला दमश वरद जी ओके तमाम शोरम मावा हो रहा है सारा मिसेज मा खुरे डेरा मनन छे तो सोई छे राइस फेस वाश सुंग नो टेंशन बेटे मसी फेस वाश नो टेंशन फॉर्मूला क्रीम नो टेंशन हर्बल ऑयल साथ साथ जब इस्तेमाल किए ज्यादा इनाम वर्क हो छे डेरा मनन देर खुले मशवरा देता सो टूलो डेरा मनन छे डेर टूलो खुले मशवरा देता सो रसरा पेश करे छे ان شاء الله تاسو کوم مشورې دي کنه په یمن د موږ مخ کې کوم د کنه هغه عمل کو چې کوم زمونږه طاهر به دي کنه سي نو غیته به زه دغه مشورې چې کوم د کنه ور مخ کې کوم نو غیته به زه بیا یم سي چې عمر به دا چې کوم مشوره ده سي دا ماته مل شو د لسن طرف نه سي تاسو دا ډبو چې کوم کور نه سي د کنه سي هغه بیا

0: मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम दिखाओ
2: गुलोनी हो रिश्ता पुंडे हो माह के डेरी ज्या तिहारा बेवे नु दुम नजर सिंगर टिक्शुले या हो रेन हो रे माह हो माह के डेरो कपनो क्रिक्री में इस्तेमाल करल हो मा ते ही सो रिजल्ट ओ फायदा न करारा और चिकला मा उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्रिक्रीम रावल नु मा ते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रज गुलोनी हो रे जे हम जान द पारा रावड़म इश्म क्रिक्रीम कतासो हम वाड़ो चिमुंग पुंद सफा सुथरा और हस्तशी नयो जल जरूर इस्तेमाल कई एश्मा क्रेक क्रीम।
3: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। एश्मा हर्बल ऑयल